0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
0: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, अरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
2: जी,
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
2: जी
0: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओ, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
2: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
0: जी,
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
2: जी,
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं।
2: जी।
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
2: जी।
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
2: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी,
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
2: जी।
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
2: बजाने के लिए

0: इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे?
12: देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ये तो रीच की आवाज है।
13: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है।
10: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
14: क्या करें क्या करें, जल्दी सोचो क्या करें।
15: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
14: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
14: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
10: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
10: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
10: ये रीच तो मुझे सूंघा। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के डर रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
10: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
14: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
14: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
10: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
1: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल।

रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगी।
7: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं,
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये

0: था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
4: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
4: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
5: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?

0: माँ, वो लोग आ रहे हैं।
1: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
0: गौरमा,
1: हाँ?
0: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हम सब तैयार हैं।
4: किसी भी हाल में जंगल कटने
2: नहीं कटने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान।
1: मिट्टी पानी और बयान।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे क्या कर रहे हो? मेरा मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
2: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर जाएंगे पेड़ों से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
2: अरे कहाँ से?
8: दो मिनट की बात तो बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
2: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
4: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, चिपक जाएंगे।
8: तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1981

0: में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

जनगणना ना प्रथम चरण मा घर यादी अने मकानों नी गणतरी एटले के तमारा मकान नी गणतरी थशे। चालो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए अने विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।

0: चलो आज तुम्हारे अंदर का जो डर है ना उसे निकालने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो अंदर का डर है ना, जो कोई भी कदम लेने से पहले 50,000 चीजें सोचता है, जो ये सोचता है कि अगर मैं फिर गिर गया तो, अगर फिर से कोई नाकामयाबी हुई तो, काम, रिश्ते, नौकरी, जिम्मेदारियां, हार से इतना डरते क्यों? मैं तो ये कहती हूं कि जितनी बार हारे हो ना, उसका एक कैलेंडर बनाओ कि कहां कहां हर साल तुमने कहां कहां कितनी हार देखी है, कहां कहां तुम टूटे हो, कितनी तकलीफें तुमने देखी है, कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा है कि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, कंधे जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं। जब बहुत भारी सा लगने लगे ना, तो ऐसा एक कैलेंडर बनाओ, वो सारे की सारी तारीखें, वो सारे साल लिखो कि यहां यहां मैं टूटा था, यहां मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई थी, यहां यहां मैंने नुकसान देखा था। वो कैलेंडर तुम्हें हर रोज ये याद दिलाएगा कि कितनी ऐसी लड़ाइयां तुमने जीती हैं, तुम्हारी तकलीफें, उन तकलीफों के पर्वतों को पार किया है तुमने, इन चट्टानों के बीच में से तुम निकले हो, कौन सी ऐसी ऐसी ऐसी दुविधाओं में से छल कपट के समंदर जिनको बस लांग के, डूब कर नहीं, लांग के तुम आए हो, तैर के आए हो। अपने आप को ये याद दिलाना ना जरूरी हो जाता है। और मैं बस ये चाहती हूं कि तुम्हारे अंदर का ये डर कहीं चला जाए, निकल जाए बस। वैसे तो कई सारे मंत्रा होते हैं जिंदगी जीने के, पर ये एक मंत्रा ना मुझे बहुत सही लगता है, भाड़ में जाए। थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन एक बार मन में जब ऐसा आ जाए ना कि क्या जाएगा, हद से हद जाएगा क्या, मेरा है ही क्या जो जाएगा। एक कहानी मेरे बहुत प्यारे से दोस्त ने मुझे 2 दिन पहले सुनाई कि शहर के सबसे महंगे से महंगे सड़क पे, महंगे से महंगे बंगले में रहता वो बड़ा सा करोड़पति उसी शमशान घाट में गया है जहां सबसे सस्ती सी कोई गली में किसी झोपड़े में रहने वाला, और दोनों को उस चिमनी में डाल के वो लाल बटन दबाते ही ऊपर से धुआं निकलता है ना, जैसे ही शव जाता है वो देह जब जलता है ना, भस्म हो जाता है, तो सिर्फ धुआं रह जाता है। चाहे आप करोड़ों की गाड़ी में या फिर सड़क पे कहीं धूप में एड़ियां रगड़ रहे हो, लेकिन अंत तो दोनों का वही है। तो जाने वाला तो सब कुछ है अंत में, तुम मैं सब कुछ, तो किस चीज का डर तुम पालते हो अपने अंदर, क्या नुकसान हो जाएगा? कदम लेने से पहले डरते किस चीज को लेकर हो? निकाल के फेंक दो इस डर को। आज रात सो तो इस हौसले के साथ कि मेरा है ही क्या जो जाएगा। मैं मानती हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जो शून्य से शुरुआत करने की ताकत रखते हैं। और अगर ऊपर वाला तुम्हें बार बार शून्य दिखा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, वो लम्हा आएगा जब ये सारे शून्य सही जगह पर कहीं पीछे लगाए जाएंगे, और तब तुम्हारी कीमत नहीं होगी, तुम अनमोल हो जाओगे। इसी के साथ आज की एक टॉक यही समाप्त होती है।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: चलता है, सब कुछ चलता है। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम कुछ नहीं करना चाहते, जब जैसे भी हालात हो, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुम बस जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहते हो, सब कुछ जैसे छोड़ देते हो। तुम ये सोचते हो कि मेरे कुछ कहने या करने से फर्क ही क्या पड़ेगा। यू नो यू वेरी इजीली एक्सेप्ट एवरीथिंग। तुम्हारे जहन में ये आता है कि ठीक है ना, कितना कर सकते हैं, कितना अपने हिसाब से आप कहानी में बदलाव ला सकते हैं। अंत में जिसने लिखी है उसने सब अपने हिसाब से ही करना है, तुम्हारे या मेरे कुछ सोचने से होने ही नहीं वाला। तो जब कल सुबह उठने के बाद होने क्या वाला इसका अंदाजा ही नहीं है, तो क्यों ना जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। इस बात की फिक्र करे बिना कि कितना हो पाएगा, क्या जैसे सोचा है वैसा वैसा हो पाएगा, बात वैसे बन पाएगी। क्यों ना बस ऐसे उस पर छोड़ दिया जाए। आखिर किसी की जिम्मेदारी है इस कहानी को पूरा करना, जिसने शुरू की है। आगे का सीन भी वही डिसाइड करे, हम क्यों करें। हमारा काम तो बस किरदार निभाते रहना है ना।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस? जब अपने ही शहर का सूरज पराया सा लगता है, जिस सिग्नल पर सुबह दफ्तर जाते वक्त बीच के वो 2 मिनट तुम साथ होती तो ये ख्याल आता है। जब अपनी ही खिड़की से आती हवा भी अपनी नहीं लगती, शायद तुम्हें भी यही छूती होगी, ये ख्याल आता है। फोन की बैटरी खत्म नहीं होने देता मैं, फोन की बैटरी खत्म नहीं होने देता मैं, हर रात तुम्हारे वीडियो कॉल का इंतजार रहता है। थकान सारी उतर जाती है मेरी, थकान सारी उतर जाती है मेरी, जब ऊपर आसमान में बैठा वही चांद यहां मुझे और वहां तुम्हें तकता है। लोग पूछते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कितना टिकता है, मैं कहता हूं जब तक मुझ जैसा कोई तेरे ख्यालों में बार बार बिकता है, लॉन्ग डिस्टेंस टिकता है।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: बस सब कुछ बढ़िया। तू बता, इससे बड़ा झूठ ना कोई नहीं बोलता। ये झूठ शायद हम दिन में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। अक्सर लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, खूबसूरत से इंटीरियर डेकोरेशन, सजावट, काफी कमाते हैं मेहनत से और खर्च करते हैं, सुंदर सा घर। लेकिन असल में हम रहते कहाँ है पता है? हम रहते हैं अपने दिमाग के अंदर। हम रहते हैं उन लोगों में जो हमें जानते हैं। हम रहते हैं उनके ख्यालों में। हम रहते हैं खुद के सवालों में। हम रहते हैं बेवजह सी बवालों में। जब इतना सारा खर्चा करके, मेहनत करके अपने घर का हर कोना सजाने के पीछे कितनी सारी मशक्कत करते हैं, अपने जहनी घर के बारे में तो सोचते ही नहीं है। जब हम लोगों की बातों में रहते हैं, उनके दिलो दिमाग में रहते हैं, ऐसे तो कितने घर हैं जिन्हें सजाने के बारे में हम सोचते ही नहीं है। अब आप कहिए, हम कितने घरों में रहते हैं?
1: नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

0: कभी कभी सोचती हूं कि मुकम्मल का मतलब क्या होता है. What complete stands, you know? मुकम्मल होना किसे कहते हैं. बहुत ही प्यारा सा लाइक लफ्ज है मुकम्मल, कंप्लीट, पूरा होना. ऐसा कहते हैं कि जब कोई गुजर जाता है ना तो कहते हैं पूरे हो गए, जिसका मतलब होता है अधूरे थे पूरे हो गए. इसका मतलब जितने लोग जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, वो अधूरे हैं. पूरा होना अपने आप को खत्म करने जैसा है. तो जब पूरा होना ही अपने आप को खत्म करके है तो क्यों ना इश्क किया जाए, क्यों ना अपने आप को बर्बाद किया जाए, क्यों ना खो दिया जाए ताकि पाना क्या है वो पता चले, क्यों ना एक ये कोशिश भी की जाए. और ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इश्क मोहब्बत में अपने आप को खो दे. नहीं, एक माँ जब अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, उसे प्यार करती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, आधी रात को अगर वो बीमार हो तो उसके सर पे पानी की पट्टियां रखती है, उसके खांसते ही खुद बेचैन हो जाती है, एक माँ अपने आप को खो देती है, या ये कह लो कि अपने आप को पा लेती है. जब एक बच्चे को बड़ा करती है, अपनी औलाद को, शायद देना इसी का नाम जिंदगी है. हम पाते ही तब है जब हम देते हैं, जब हम खो देते हैं हम तभी पाते हैं, है ना. मैथ्स है या साइंस है, लेकिन कुछ ऐसा ही है, जोड़ तोड़ जिंदगी का गणित. अक्सर कहते सुना है लोगों को कि कोई गुजर गया हो तो वो पूरे हो गए. पूरे मतलब क्या? पूरे मतलब हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये अधूरे हैं. हम अपना अपना कर्म काट रहे हैं, और जब सब हिसाब हो जाएगा तब बारी आएगी एक एक करके सबकी, आपकी मेरी, तब हम पूरे होंगे, लेकिन तब तक हम अधूरे हैं. और इसीलिए इस अधूरेपन में ना अच्छे काम करना बहुत जरूरी है. ठीक है,
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो. रेडियो पालनपुर 90.4 FM.

गुस्से के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत बुरी बात है, बहुत तकलीफ दे देता है, नुकसान हो जाता है। मैं आज किसी के साथ बात कर रही थी और ये एहसास हुआ कि गुस्सा और आंसू दो ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से प्रमाण है इस बात का कि दो लोग कितने करीब हैं, क्योंकि आंसू और गुस्सा आप हर किसी के आगे नहीं व्यक्त करते। आप बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत भरोसा चाहिए एक दूसरे साइड देखने के लिए, चेहरे पे हंसी, खुश मिजाज। और अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि हम हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है, फाइन। कोई अपनी डार्क साइड्स कभी नहीं बताता, अपनी तकलीफें नहीं बताते। वो बयां करने के लिए आपके अंदरूनी जो रूह होती है आपके अंदर, क्योंकि दो इंसान है ना, एक आप बाहर जो इंसान है और एक आप जो अंदर इंसान है, आपके अंदर जो इंसान है

0: उसे भरोसा आए कि सामने कोई डर नहीं है, जब वो उसका पुल बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है दो लोगों के बीच, फिर ऐसा होता है कि आप जो हैं, आप सारे, आप अपने आंसू, अपना गुस्सा, अपना डर, आप अपनी सारी की सारी तकलीफें सब कुछ एक थाली में सजा के टेबल पे जैसे रख सकते हैं। और ये तब होता है जब इतना भरोसा और इतनी सहनशीलता सामने दिखाई दे, जब दिल को ये तसल्ली मिल जाए कि हाँ, यहां आप अपना संदूक खोल सकते हैं, यहां उस तिजोरी खोला जा सकता है, मन का अपने आप को पूर्ण रूप से बाहर आके दिखाना, ये हर किसी के साथ नहीं होता। तो आंसू और गुस्सा प्रमाण है इस बात का कि दो लोग कितने करीब हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, ये दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, ये एक एम्प्लॉय और उस बॉस का रिश्ता हो सकता है, ये दो बहनों का रिश्ता हो सकता है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी और भरोसा उसका पीक है, आंसू और गुस्सा।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मैंने अक्सर लोगों को ऐसा कहते सुना है, हर बार मैं ही क्यों झुकूं? क्यों मैं, वो क्यों नहीं झुक सकता, ऐसा क्यों? चलिए आज जरा ऊंच नीच की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि झुकना ताकत होती है। जहां जहां सर झुकता है बात वहीं बनती है। मेरा नाम है एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉप एकता इन लव पर। सजदा जमीन पर हो तो बात आसमानों तक पहुंचती है, ऐसा है। आप सोचकर देखिए, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जहां झुकने पर बात बनती है। जैसे कि मेहनत की कमाई हुई रोटी जब थाली में होती है, उसे तोड़कर एक निवाला लेते हैं तो जरा सा आपकी गर्दन झुकती है ना, तब जाके वो निवाला आप अपने मुंह में डालते हैं, है ना। थाली की ओर झुकना पड़ता है, थाली कमाने में, रोटी कमाने में जो मेहनत लगती है। आपको जब कोई मान सम्मान देता है और आपके गले में माला डालता है फूलों की, तब भी आपको झुकना पड़ता है ना, वो इज्जत कमाने के लिए। इसी तरह से देखा जाए तो पेड़ पर भी जब फल लग जाता है तो डालियां जरा सी झुक जाती है। जितना बड़ा विशाल पेड़ होगा, डालियां झुकती है ना, वजन हो जाता है फल की वजह से। लेकिन फल वाला पेड़ होता है तो डालियां जरा झुकती है ना। आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ते वक्त भी नजर का नीचे होना जरूरी है। हमें कदम बहुत देखकर आगे बढ़ाने पड़ते हैं कि कहीं गिर ना जाए, डगमगा ना जाए। इसलिए नीचे देखना, झुकना, ये सब बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि सजदे जमीन पर होते हैं, सर यहां झुकता है और आपकी बातें, आपकी दुआ सीधा आसमानों तक पहुंचती है, वो जो सबसे ऊंचा है वहां तक पहुंचती है। इसीलिए झुकने को कमजोरी नहीं, ताकत समझिए। अगर आप झुकना जानते हैं तो आपका कद बहुत ऊंचा है, कसम से कह रही हूं। ऐसे बहुत ऊंचे हैं मुझे मिले मेरी जिंदगी में, जिन्होंने मुझे झुककर अपनाया और उनका कद बढ़ता गया मेरी नजरों में, और ऊंचे होते गए। तो झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना एक ताकत है। जितना आप झुकेंगे आपका कद उतना ऊंचा होता है। कंडीशन अप्लाई।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

वेलकम बैक 90.4 FM इटली के अपना बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित रेडियो स्टेशन पर हूँ आरजे यार आप सौ ने संभळावी रह्यो छु सौम्य तेजस्वीनी पुस्तकना अंशों ने जेनु प्रकरण चार रावणेश्वरनी वार्ता ने जेना लेखक छे डॉक्टर गिरीशभाई ठाकर तेनो एटले के रावण नो प्रहस्त नीचे जईने आवे छे अने एकदम आश्चर्यजनक पण खुश पण होय छे।

आप जियो हजारों साल और हर पल में आपको मिली खुशियाँ देर सारी। दोस्ती को जिसने नाम दिया सच्चा, जहाँ मुझे एक लगाव मिला सच्चा। कुछ भी न मैंने तुमसे मांगा, न तुमने मुझसे, फिर भी एक वादा मिला सच्चा। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं जो आपसे हो। हमें अपनी जिंदगी में एक छोटी सी जगह दे दिया और हमारे दिल में आपने ले। दोस्त आप चाहे हमें याद रखे न रखे, पर आपकी यादें हमें हर पल आती रहती है। आप ही तो है जिनसे हम कुछ भी कह सकते थे। आप ही तो है जिनसे हमारा दिल जुड़ा हुआ है। ऐसी दोस्ती को सलाम करते हैं। कभी भी किसी भी वक्त याद कीजिएगा, आपका दोस्त आपके लिए हर वक्त हाजिर हो जाएगा। आप हमें चाहे भूल जाए, हम आपको न भूल पाएंगे, क्योंकि आप हमारे दिल में जो बसते हैं। विश यू अ हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। दोस्त तुम जियो हजारों साल।

जवाब, दांतु ने दुखड़ा पड़े। जीभ दिए जवाब, दांतु ने दुखड़ा पड़े। पड़ोस ना परताप, कायम भोगववा कागड़ा। पड़ोसी सारो होय ने त्यां सुधी तो सारो, पण पड़ोसी नबड़ो के खोटू आचरे त्यारे आपणे पण एना लीधे वेठवू पड़े छे। ए व्यवहार ज्ञान ने कविए जीभ दांतना दृष्टांत थी समझाव्यु छे। वाद विवाद में जीभ खरु खोटू बोली बेसे छे, ने सामो मानस जयरे धौल मारे छे तो दांत पड़ी जाए छे। जीभनो गुनो पण सजा तो थाय छे दांत ने। खराब पड़ोसी माटे पण एवुं ज छे, सारा मानसे पण आम ज वेठवू पड़े। कागे तो आवा सैकड़ों दुहा लखीने संत कवि कबीरनी जेम संसार ने सतत चेतव्यो छे। संसारीओ ने दीवाधरी अने मार्ग पण चींध्यो छे। एटले ज तो गुजराती साहित्यना आ दुलाभाया कागनी कागवाणी ने ज्यां पण सरल अने गुजराती साहित्यमां तमने जोवा वांचवा मळे ने तो एक वार वांचवी पण जोईए, अने तमारा मित्रों स्नेही अने आपणा संतानों ने ते विषे समझावू पण जोईए। आ सुंदर अनुभवेली सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर ने वधारवी अने समझवी ए आपणी जवाबदारी छे। वात ने आगळ वधारीशुं अविराम बाद, त्यां सुधी मस्त रहो, व्यस्त रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

सहित संपर्क करो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 95926688 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी मस्त रहो व्यस्त रहो सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।